0: न जाए जेको कहे पीछे पछताए
1: कागद कलम न लिखण हार मन्ने का बह करन विचार
0: ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोए
1: मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध मन्ने सत्य कौन की सुद्ध
0: मन्ने मो चोटा न खाए मन्ने जम के साथ न जाए
1: ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने
0: मन्ने मार्ग ठाक न पाए मन्ने पत सिउ प्रगट जाए
1: मन्ने मग न चले पंथ मन्ने धर्म सिद्धि संबंध
0: ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोए
1: मन्ने पावे मुख द्वार मन्ने परवार साधार
0: मन्ने तरे तारे गुर सिख मन्ने नानक पवे न ना भिख
1: ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने
0: पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावे दरगाह मान
1: पंचे सोहे दरा जान पंचा का गुर एक ध्यान
0: जे को कहे करे विचार करते के करने नहीं सुमार
1: ताल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत
0: जे को बुझे होवे सचियार तबले ऊपर के

0: चकर बकर फिरे चतुर चक मानिए पुरतीन
1: की बख जग जापी जे जाप
0: आद देव नाद मूरत थप्यो सबे जय थाप
1: पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख पार
0: सर्व विश्व रचियो स्वयंभव गण पंचन हार
1: कलासन जगत काल पुरख देश
0: धर्म धाम सो परम रहत पूते अलख बेस
1: अंदरागन रंग जाक जात पातना नाम
0: गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुक्त दायक काम
1: आप रूप में कानोस्त देख पुरख अवधूत
0: गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत
1: पंगन अधमेक पुरख पार
0: सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार
1: सर्वगंता सर्वहंता सर्व त्यन पीख
0: सर्व शास्त्र न जानिए जय रूप रंग अर रेख
1: अभिद प्राण जाक नित पाखत नित
0: ओट सिमरत प्राण शास्त्र न आवे बहचित मधु पार संतवा प्रसाद
1: गुणगान उदार महिमा परासन भंग उपमा नंग
0: अनुभव प्रकाश
1: राजपानान पान देवान दीपमा महान
0: इंद्रान इंद्र बालान बाल रंग कालान काल
1: गंगा बाप अंगत मित पार गुण गण उदार
0: गुणगान प्रणाम निरपय निकाम आतुर प्रचंड मित गत
1: कर्म दृश्य धर्म सर्वा प्रणान डंडन बाड
0: चाचरी संत व प्रसाद
1: दे मकंदी उदारी अपारी।

0: सर्वंगांता सर्वंगांता सर्वंख्याता सर्वंज्ञाता
1: सर्वंगहर्ता सर्वंगकर्ता सर्वंगप्राणंग सर्वंगत्राणंग
0: सर्वंगकर्मंग सर्वंगधर्मंग सर्वंगयुक्ता सर्वंगमुक्ता
1: सावलशान्त्वा प्रसाद
0: नमो नतमस्तु देवं प्रकाशयन्नं स्वरूपे।

0: सब जगत बनायो देव दें जछन उपजायो
1: आदत एक अवतारा सोई गुरु समझो हमारा
0: नमस्कार तसीह को हमारी सकल प्रजा जने आप सवारी
1: शिवकन को शिव गुण सुख दियो सतरण को पल मोह बद कियो
0: कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पहचानत
1: चीटी दे कुंचर असोला सब पर कृपा देश कर
0: फूला संत दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी
1: एक एक की पीर पहचाने कट कट के पट पट
0: जावद कर करा कर तारा प्रजा तर्तव दे अपारा
1: जपा करख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत दे तर सब
0: हूँ जिते बदन सृष्ट सब थार आप अपनी बूझ उचार
1: तुम सब ही तेरा ते निरालम जानत भेद भेद अर आलम
0: अहंकार निरपकार निरलाम बाद नीलो नाद असंभ
1: काका मूड चारत पेता जाको पेव न पावत बेता
0: काको कर पाहन अनुमानत महा मूड कछ भेद न जानत
1: महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चिन्हत
0: आप अपनी बुद्ध जीती वर्णत पहन

0: तुम करो सिखो बार सिख संग रो
1: सकल
0: शरणी परि तिनके दुष्ट दुख दो मरे
1: परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे
0: को एक बार ते है ताकि कार निकट न है
1: रक्षा हुए ताई सब काला दुष्ट रिष्ट करे तत्काला कृपा
0: दृष्ट तन जाए निहर हो ताकि ताव तन को मुहर हो
1: प्रेत सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाश्व सके न
0: एक बार जिन तुम्हें संभारा का

जलत मई जल सोयश्वरी कर्ण क्रावण कर्ण जोग ज्योतिष पाव सोई होग किन्मे था पुता पुनहरांत ने किस पार वार हुक्मे दार द्रहावे हुक्मे उजे हुक्म समावे हुक्मे उचनिज विहार हुक्मे अनुक्रंग प्रकार कर कर देखे अपनी बढ़ियाई नानक सब मेरे समाय प्रभावे मानु गद पावे प्रभावे त पात्र त्रावे प्रभावे अनुशास राखे प्रभावे त हर गुण पाखे प्रभावे त पतु धारे आप करे अपन बिचारे दुहां सिरां कै आप स्वामी खेलै बिकसै अंतर जामी जो पावे सो कर करावे नानक दृष्टि अवरण आवे कहो मनुख ते क्या होए आवे जो तिस पावे सोई करावे इसके हाथ होए तां सब कुछ ले जो तिस पावे सोई करे अणजाणत विखे मेरे च जे जाणते अपने बचे भरमे भुला दै दिस आवे निमुख मै चार कुंड फिरे आवे कर कृपा से अपनी भगत दे नानक ते जन्ना मिले खिनम नीच कीट को राज पार ब्रह्म करीब नवा जा का दिस कछु न आवे तिस तत्काल दै दिस प्रगटावे जा को अपनी करे बख्शी ताका लेखा ना गणे जगदीश

कोई पर बड़े राजा को भिखारी निसका साजा कभू आप कीर्त में आवे कभू भला भला कहावे जो प्रभ राखे ते जाए गुरु प्रसाद नानक सज कहे कभू होए पंडित कृप ख्यान कभू मोहन धारी लावे ध्यान कभू तड़ तीर्थ स्नान कभू से साध मुग्यान कभू कीट हस तंग हो जियान कजुण परमे परमैया नाना रूप जो संगीत गावे जो प्रभ पावे ते नचावे जो तिस पावे सोई होए नानक दूजा न कोय कबू सात संग ते पावे सस्थान ते बुण न आवे अंतर होए ज्ञान प्रकाश सुसंधान का नहीं विनाश मन तन नाम रते करंग सदा बसे परम के संग जो जल मैं जलिया इकटान त्यों ज्योति संग जो समाना मिट गए गावन पाए बिश्राम।

जब लग मा जाने सब सब मुझते कुछ हो तब उसको सुनाई को जावे जाने मैं कुछ करता तब लग करो जुन मैं फिरता जब तारे को बैरी में तब लग चलना है ची जब लग मोह मंग संगमाए तब लग धर्म रह दे सजाए प्रभु कृपा ते बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक हो झूठे सहज कटे ला कोड़तावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे अणक भोग भी क्या के करे न तृप्तावे खब का मरे बिना संतोख नहीं को राजे सुपन मनोर फिरते सब काजे नाम रंग सर सुखो भागी किसे प्राप्त होए करण करावण आपे आप सदा सदा नानक जाप करण करावण करणे हार इसके हाथ का विचार जैसे दृष्ट करे दासां होए आपे आप आप रस होए जो कुछ किन सो अपने रंग सब ते दूर सब के संग बुझे देखे करे विवेक आपे एक आपे अनेक मरण बिन से आन जाए नानक सदी रह समाए आप जैसे समझे आप आपे रचे सबके साथ आप किन अपन विस्तार सब का करणे हार उसे भिन्न कौ कुछ होए थान तन अंतरे कैसोए अपने चलता करणे हार खोते करे नंगे पार मन मैं अपना अपने माए नानक कीमत कह न जाए सत सत सतपुरु स्वामी गुरु प्रसाद किने बखयान सच सच सत सब किन्ना कुड़म दे किन्न मिरल चीना भला भला भला तार रूप है सुंदर आ पार रूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घड़घड़ सुने सरण मुखयान पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत सलोक संत शरण जो जन परै सो जन उदरण हार संत के निंदा नानिका बहर बहर अवतार अष्टपद संत के दुख ने अर्जा घटै संत के दुख जम तने छुटै संत के दुख सुख सब जाए संत दुख नरक में पाए संत के दुख मा तो मिले संत के दुख सोभा ते ही संत के तग रख न को संत के दुख तन कृष्ट होय संत कृपाल कृपा जे करे नानक संत संग निंदक भी तरै संत के दुखन ते मुख पवै संतन के दुखन काग जुलवै संतन के दुखन सब जन पाए संत के दुखन त्रिगत जोन किरमाए संतन के दुखन तिसन मजलै संत के दुखन सब को छलै संत के दुखन ते सब जाए संत के दुखन नीचन चाए संत दुखी का था को नाए नानक संत भावता विगत पाए संत के निंदक मात ताए संत के निंदक निक न पाए संत का निंदक मा त्यारा संत परमेश्वर मारा संत निंदक राज तहीन संत निंदक दुख यार दीन संत निंदक सर्व रोग संत निंदक सदा विजोग संत की निंदा दुख मैं दुख नानक संत पाव तो उसका भी है मोख संत कदो किसदा फ संत कदो की किसे का नहीं मैं संत कदो की को डन लागे संत कदो की को सब त्याग संत का दुखी मांगकारी संत का दुखी सदाविकारी संत का दुखी जन्म मर संत के दुख ना सुख ते डरे संत का दुखी गुण उठाओ नानक संत भाव ताले मिलाए संत का दुखी आज बीते टूटे संत का दुखी किते काज न पहुँचे संत का दुखी उद्यान प्रमाई संत का दुखी उजड़ पाए संत का दुखी अंतर ते थोथा जो मेरे सास बिना मृत्य की लोथा संत के दुखी जड़क छिनाए अपन भी जा पे खाए संत के दुखी गवर्ण राखन हार नानक संत पाव तले व्यवहार संत के दुखी उम्र लाए जो जल भीन मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजे जो पाव के दिनी त्रापे संत का दुखी छुड़े के ला जो गुआर तिल खेत माए दुहेला संत का दुखी धर्म तेरा संत दुख सदम थे कहत कीर्त नंद का धुरी पे नानक जो दिल पावे सोए थे संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत का दुखी को दरगह मिल सजाए संत का दुखी सदा सहकाई है संत दुखी ना मरण जवाई है संत का दुखी कुछ ने आसा संत दुख चले निराशा संत का दुख न तिष्ठे कोई जैसा पावे तैसा कोई है पै कीर्तन मेटे कोई नानक जाने सच्चा सोए सब कट दिसके करने हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभु की सत करो दिन रात इसे त्यावो सास गिरा सब कुछ वरते तिसका किया जैसा करे जैसा कुथी अपना खिलाफ करने हार दूसर कौन कहे विचार जिसनों कृपा करे तिसे अपन नाम दे बड़भागी नानक जाने से सलोक तजो

अष्टभाजी मानव की टेक पृथ्वी सावधान देवन को कह भगवान जिसका दिए रहे गाय बोलन तुझना लग गया मारे आखे कुआ मानव के सुनाई हाथ तिसका हुक्म वो सुखो है तिसका नाम रखंड प्रो सिमर सिमर सिमर प्रसो है नानक बिघ्न लागे कोय औसत मन में कर निकार कर्मण मेरे सदव्यवहार निर्मल स्नामृत पियो सदा सुहेला कर लय जियो नैनो पेक्षा कारंग सा संग मिन से सब संग चरण चलो मार गोविंद मिटे भाव जपी अरबिंद कर हर कर्म कर हर कर्म सुन हर कथा अर्धर के नान कुजल मथा बट भागी तेन जन जग मह सदा सार के गुण गाय राम नाम जो करे विचार से तनवंत गणी संसार मन तन मुख भले हर मुखी सदा सदा जन ते सुखी एको एक एक पछाने तुत कियो सो जी जान नाम संग जी का मन मानिया नानक तिने निरंजन जानिया गुरु प्रसाद अपने आप सूझे तिसकी जानो तिस न बूझे सा संग हर हर जस कह सरु रोग त्योहार जन रहत आन दिन कीर्तन वे उख्यान किस्त मह सो निर्वाण एको प्रसिद्ध जन की आसा तिसकी कटिए जमकी फासा पार ब्रह्म की सुमन भोग नानक तिस न लागे दोग जिसको हर परमंच ते आवे सो संसो लाने डुलावे जिस प्रभु अपना कृपा करे सो सेवक को किसते डरे जैसा साता सा दिष्टा अपने कार्य में आप समाया सोद सोद सोद सी जिया गुरु प्रसाद ता सब उजिया जाव देखो तब सब कुछ मूल नानक सो सुखम सो स्थूल न कि जन्म न कि मरे अपन चल जा भी करे आम जाम दृष्टि अंदृष्टि अज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ है आपे आप जाप आपे आप सगल में आप कुदरव थाप थाप नासी नाय किस कारण धारण तार हो ब्रह्मांडल पे प्रकृता आपे आप जपाए तनाक जाप जिन प्रभु जाता सो सुभावन सकल संसार उदरे तन मन प्रभु के सेवक सब उदाहरण प्रभु के सेवक धूप सारने आपे मेल ले कृपाल गुरु का शब्द जप निहाल उनकी सेवा सोई लागे इसनु कृपा करे बड़ भाग्य नाम जपत भाव विश्राम नानक तीन प्रभु कुतम कर मान जो कुछ करे सो प्रभु के रंग सदा सब से हर संग सह सुहाय होए सो होए करण हार पछाणे सोए प्रभु का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दुष्टाना जिस देव जद समाय समाय सुख निदान उन्हों बनाया।